0: हेलो आप पीछे बोलिए
1: आप पीछे बोलिए अब आप पीछे
0: वेरी गुड
2: सर अरे आज आप
3: वेरी गुड है
0: गुड
3: गुड हाउ आर यू
0: हे टेक इट
4: दरी
3: रहा हूं यस गुड गुड
0: अ
3: लिटिल बिट
0: हां बिट होता ना आई सी यू
3: वेरी गुड
0: वेरी गुड।